0: जन जासी रचना जन रचाई
1: रंगी रंगी बाती कर कर जिनसी माया जनम पाई
0: कर कर वेक कित आपना जिफ्त सती बढ़ियाई
1: ज्योति सुभावे सोई करती हुकम न कर न जाए
0: सो पत साहो सह पत साहब नानक रण रजाई
1: मुंड संतोक सरम बचोली ज्ञान की करे विभूत
0: केंत काकुआरी करिय जगदंदा पतित
1: आई पति सगल जमाती मन जीते जग जी
0: आदेश से आदेश
1: आदनीय नाग नाग जुग जुगे गोवे
0: अपगते की अंदरी अनबंदा

सचेकि सचिका आद नील नाद नाह चिक चिक एक वेश अलग अलग गेड आकिया है एक नाम जगदीश सुन कला आखा सखी किट आईरिस आकन जोच पे ना जोर जो न जीवन मरण ना जोर जो न सृति ज्ञान विचार

0: पृथ्वी परमसाल जिनके नाम अनेक अनंत सचा आप सचा दरबार अनादरी करम पवे निशान नानक कहे जपे जाए ज्ञान खंड का आखो करम केते परमे करत करिए रूप रंखे वेश केते इंद्र चंद सुर केते मंडल देश केते ते तनम मन केते रचन समंद केते सुरति सेवक केते नानक अंत नाथ चित्ते नर बन रखोड आनंद चित्ते करत करिए बहुतान जे को कहे पिछे पिछताए चित्ते करिए सरस दा की सोच चित्ते होर ना कोई होर
1: चित्ते जो महाबंसुर
0: दिन में राम रहिया परपूर ताके रूप न खत न जाहे अजिन के राम बसे मन माहे करे नंद सच्चा मन सोए अखर कर वेक नर नहा जे को कथे ता अंत न आंत जिव जिव हुकम तवे